0: राधे श्याम राधे श्याम।
1: अरे राधा, ये किस फिल्म का गाना है?
0: ये गाना नहीं है भाभी, ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है।
1: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी?
0: क्यों नहीं, जरूर। और आपके लिए 10-25% की छूट भी है।
2: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.